नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। यह योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान

0: दौरान प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रही हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ,
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के दो मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: సమయం 12 గంటలు కావస్తుంది. వార్తలు
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే ప్రియాంక అరోడా. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है. श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है.
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है. आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं. इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है. इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे.
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी.
1: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6

0: प्रतिशत रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गो शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सहेली
1: नमस्ते सभी सखियों को, सभी सखियाओं को, सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे से
1: हेल्दी नमस्कार।
2: हाँ बिल्कुल, नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
1: हाँ।
2: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
1: जी।
2: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं, उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके साथ कोई हल्का फुल्का उसे कहीं हल्के में ना ले,
1: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश मैंने कह दिया
2: तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाई

0: को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए ये भी शौक सबको होता है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे, और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती। लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने फोटो खींची है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं, वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
1: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर उसके धुलाई पे जाएगी, और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
0: जी।
1: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के, यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका, अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है। आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: यानी कि जो नफरत की क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चले जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, आज है विश्व मानवता दिवस,
1: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में भी बात होगी और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है इस बारे में ही बात होगी।
0: और साड़ियां पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पसंद है आपको साड़ी पहनना?
1: भाई महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना, वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता है। लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
0: बिल्कुल।
1: और इतने सारे प्रकार है ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी
0: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं
0: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें घर में, जो पीछे परिवार में बच्चे रह गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है। कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज भेजिए।
1: तो हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पर जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ में।

0: दीपा हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है ये तनहा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजो कर चलना होता है। फोटो उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी वो हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है कि फोटोग्राफी क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डेगोरियो टिप ये आविष्कार किया गया था,
0: बिल्कुल,
1: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
0: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत काम की चीज बन गई हमारी।
1: बिल्कुल, तो ये लुई और जोसेफ निप्स इन दोनों ने मिलके इस टाइप को ये जो आविष्कार है इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए आप यूं कहिए कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: हम सबके जीवन में
0: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है और सदियों में ये विकसित हुआ जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है उसे साझा भी करते हैं और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक

0: तस्वीर क्या है। तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है उस क्षण को, उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना?
1: जी, सही कहा।
0: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं। जहाँ आप रहते हैं या आपका कोई आपका गृह, आपका देश या वो स्थान जिस जहाँ आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो, तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते हैं।
1: और देखो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं। और ये बहुत अच्छी बात लिखी है।
0: बिल्कुल। और एक संदेश और आया है बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले जो पिक्चर है फोटो खींची हुई वो बहुत सुंदर लगती है उसके सामने।
1: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था।
1: हाँ।
0: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी। फिर कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास, लोग भी बहुत कम रखने लगे हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है या वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको लेते हैं, वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
1: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते हैं कि इंतजार करना पड़ता था ना, जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आप सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
0: बिल्कुल।
1: कई बार कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहां वहां देख रहे होते हैं, तो वो फोटो पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वही रह जाएगा।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या क्या होता है, तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं। फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी है,
1: हाँ।
0: तो आपको कोई ऐसे छोटे से गाँव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई, हाँ। हो, तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
1: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी है। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नज़दीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
1: हमारे

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था, उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे। लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे, और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में। उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो

0: खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
1: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए,
0: हाँ,
1: और कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही जाता था। पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से कहीं नीचे से अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते हैं।
0: और ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है, हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे? उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
1: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लें।
0: चलिए।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं विविध भारती पर। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं। 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे। तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी और करीब 4000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति

0: उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहां हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंबक की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है। इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल, ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
0: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें भी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप हैं।
0: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी दिल है उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें है ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारे एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है। तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
1: बिल्कुल।
0: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
1: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजे और ढेर सारे तस्वीरें खींचे और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
0: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के होंगे। आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिये में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है और इसकी खास पहचान होती है इसकी जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने होते हैं
1: जो बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहाँ की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ।
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और

0: आई यानी वो तकनीक बंदेज या रंगाई इसकी तकनीक का ही एक रूप है और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी,
1: हाँ।
0: है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं, हाँ। हमारे वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
1: जो
0: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
1: जैसे आपने
0: लाल कलर की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
1: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उस पर कुछ नारंगी या हरे, हाँ, रंग की धारियां होंगी। अगर गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना देता है।
0: बिल्कुल खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
1: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपनी खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर यह बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है। और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो जॉर्जेट कॉटन
0: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली,
1: जी, जी। और अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
0: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं। और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो, हाँ, लहरदार जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियाँ, ये ताज़ा डिज़ाइन आजकल खूब वहाँ के मार्केट में आप देख सकते हैं।
1: सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया कि जो दुपट्टे बनने लगे हैं, वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुसल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
0: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है।
1: इसके अलावा पगड़ियां भी पहनी जाती हैं, पगड़ियों में भी लहरिया होता है, जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया, इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना, ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
0: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
1: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं. और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट बनने वाली जो चीजें होती है ना उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और इसे आहार बना रहे पेट में.
1: बिल्कुल सही.
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है. इसके लिए सामग्री क्या चाहिए हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है. 1 कप सूजी में 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए. इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें. अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं. आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें. इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. अब 1/2 चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह कुछ भी डाल सकते हैं और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए. नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोसकर खाया जा सकता है.
1: बिल्कुल. और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, 1 कटोरी उबले हुए

0: उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें और थोड़ा सा चाहें तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें
1: और अभी गाना सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़े से देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगो कर उसे भी निचोड़ कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा मतलब आटे जैसा तैयार,
1: हाँ, मतलब ये एक साथ में इकट्ठा हो जाए,
0: हाँ, टिकिया का टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट इसे आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां टिकिया बनाकर खाएंगे क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत,
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती के सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे जो की हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
2: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
2: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। When I was in Kashmir,
1: जी।
2: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना से नाम तो समझ ही आया आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
2: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा।
2: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी,
2: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
1: जी।
2: वैसे वो जे एंड के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी।

0: उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा।
0: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे J&K में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
0: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं। लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिसपे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा, हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से तो
0: मेरे। लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
0: दोनों जहान तेरी

0: 102.8 सुनूं या एक और है 107. जैसे आकाश में गोल्ड
1: जहां जहां शहर बदलेंगे हमारे नंबर्स बदल जाते हैं, आपको अलग अलग शहर में अलग अलग दिखाई,
0: लेकिन मुझे इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है बिकॉज एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम मतलब प्रसारण होता है
1: जी।
0: मैं माफी चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहां ना उच्चारण है ना भाषा है ना कोई उसका अंदाज है, लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए
1: जी। हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो अच्छा
0: हम हमेशा
1: चलता
0: साथ
1: जाता है।
0: हम हमेशा साथ।
1: तो अब हम वापस आपके जीवन पे आ जाते हैं।
0: फिर मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर, वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल, अब भी है वो, जहाँ पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोड़ते हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ
1: जी।
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन करने
1: सेट लगाने के लिए
0: लगाने के लिए, और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहां, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, इनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव था हमारा
1: जी।
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह की वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था J&K एकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे छोटे थे तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका, लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था। फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम अ सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं, तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई
1: जी।
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा।
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब, तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो
1: जी।
0: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें प्लेज करते थे, तो वहां से कुछ ना कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई, तो यहाँ से तो आना शुरू हुआ ही था कभी ना कुछ। लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं
1: जी,
0: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते थे। तो उन्होंने हमेशा कहा बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे, तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डालते रहो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी शूज लेके आते थे, जाते थे, कभी वो लाते, तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं

0: घर से निकल पड़ा था एक्चुअली, सच बताएं तो
1: निकल पड़े थे, मतलब ऐसा था भाग कि पड़े थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया
1: जी।
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया। मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा था। और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है। तो वहाँ हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ। तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम एक दो घंटे निकाल के मैं और हम लोग मेरे कुछ साथी थे उनके साथ हम थिएटर वगैरह प्लेज पढ़ना, प्लेज की रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वाज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा जब मैं दिल्ली
1: 18-20 साल की उम्र थी।
0: तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा वहाँ पे। उस दौरान फिर मैं कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से। मैं सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में,
1: मतलब रेडियो का साथ छोड़ा नहीं
0: रेडियो मेरे साथ में हमेशा रहा है
1: जी।
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना तो उसका रेडियो चलता रहता, गीत भी चलते रहते थे, वो प्रिपेयर भी करते रहते थे। मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता था।
1: लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं।
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है, लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडल्जेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे। तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला
1: जी।
0: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो,
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था। और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला
0: जी,
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला। तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं। तो उसके लिए वो क्या करें, अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो
1: जी,
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण जो बार बार कह रहा हूँ
1: जी,
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज बेस कैसे आएगा, ऐसा नहीं हो। मुझे कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज कैसी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज नेचर से मिलती है
1: जी।
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का रियाज कैसे कर सकते हैं,
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है, मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती
1: है, मतलब बेस अच्छा होता है,
0: तो उसमें आप नीचे की तरफ नीचे आए नीचे की तरफ जितना जाएंगे
1: जी।
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन्यू आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: है
1: जी।
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या आ करके ही कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है, किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो कि,

0: मेरी डायलॉग डिलीवरी में या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है और उसको कैसे साथ में लेके चलना है। तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है
1: जी।
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है। तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं
1: जी।
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
1: जी।
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते
1: खुद
0: हैं।
1: खुद के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या, और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफी लोग इंस्टीट्यूशन से वो वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग
1: जी। तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो आप पहुंच सकते हैं। और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान रखें।
0: जी जी बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता नहीं है। और गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे सीखूं
1: जी,
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही
1: जी।
0: तो हम बचपन में गए ना वापस?
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं। और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया
0: जी, जी।
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें एक कोई गीत गाकर सुना दे ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी।
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है
1: जी।
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र
1: जी,
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं। प्यार ही प्यार बेशुमार टाइटल रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है। उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा सौभाग्य
0: है ना, ये होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में
1: जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन मुंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं है उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने, तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। थोड़ा
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष
0: जी, जी।
1: अब वो है नहीं
0: जी,
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे वो, बहुत ही अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबूलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने वो दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बैंड्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे।
0: हाँ।
1: और मेरी आंटी घर पे रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बता दी, कोई कुछ मैसेज मिलता नहीं था,
0: भूल गई।

0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय।
1: अच्छा,
0: आई थिंक दैट वॉज कुछ साउथ के लिए था।
1: हाँ।
0: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के, बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे ज्योति ठाकुर। तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की थ्री रोजेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत, मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं। तो आई हैड टू डू माय ओन थिंग्स। तो आई यूज्ड टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के लोग थे। तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई थिंक आई यूज्ड टू, मुझे लगता अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा। फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी।
1: हाँ।
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस वक्त एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था, उसमें किरदार था जीवन का
1: जी।
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया, सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहाँ पे वो लिफ्ट है, वो वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़के का, तो मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू मोनीश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया। महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
1: जी।
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने, उस
1: इतने समय सारे सीरियल्स कर लिए, गाने तो याद रहते हैं। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है
0: जी।
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाएंगे
1: जी। ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: क्या बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
2: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि हाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं, मुझे भी खुशी है बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं
0: जी,
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध भारती के श्रोताओं को खासकर उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका
1: जी,
0: मिल गया
1: जी।
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन किन जगहों पर क्या क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे, मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था। जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख गया था। तो देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे, तो वो देव साहब बहुत प्यार करते थे मुझे, कश्मीरी करके बुलाते थे, ए कश्मीरी कम हियर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात करते थे।
0: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना।
1: मैं उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया था।
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर, देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटर कुछ में भी था, जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था, उनका आनंद डबिंग भी था, और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में, मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहां गया था। तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना, इट्स द बिगिनिंग ऑफ

0: करियर तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके, मतलब इट इज मुझे हाँ ऐसा लग रहा था। उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा। इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था, मुझे मालूम नहीं, ये मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था, मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे मैन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे नेगेटिव रोल में। नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी आवाज और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव रोल विल सूट मी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट गया,
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए
1: जी,
0: देयर हैज टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा
1: जी,
0: लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है
1: जी,
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था।
1: अच्छा।
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग, और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं, तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों करते थे, तो ऐसा ही हमारा भी कुछ वैसा ही था
1: जी।
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ, मैंने वीर ज़ारा, मुझे यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में, तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया
1: जी।
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना सकते
1: थोड़ा सा आप गा के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी आप थोड़ा गा के सुना दें, तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे।
0: जो बंदिशें हैं जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते।

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यस चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट्स होने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका नाम पहले लाहौर 1947 था। अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं, आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है
1: जी।
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे।
1: अच्छा।
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है
1: जी।
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें हैं।
1: आपको आने वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और
0: बहुत शुक्रिया
1: जी। अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है
0: जी।
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है
1: जी।
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या। आपकी चीजों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे
1: जी।
0: और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है आपको। मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है, आपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है,
0: एनग्रॉस किया हुआ उसमें ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो हारते हैं टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है
1: जी।
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है, इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना
1: जी।
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म
1: जी।
0: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं
1: जी।
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं
1: जी।
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक
1: जी।
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं
1: जी।
0: ऐसा

0: कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए। लता जी 11 साल की उम्र में उनको सक्सेस मतलब गाने का मौका मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही। मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं, बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने उसके लिए कुछ वैसा सैक्रिफाइस नहीं किया होगा ना, तो होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन,
1: बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
0: टूटना नहीं होता है,
1: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था
1: जी।
0: मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो स्टॉलवार्ट्स हैं, मतलब इतने बड़े दिग्गज जो मेल सिंगर्स हुए हैं, उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे, दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे। और मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को। तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है
1: जी।
0: वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी, बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मौसम फिल्म का गाना उनका आया, गरौंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं
1: जी।
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे
1: जी,
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था
1: जी।
0: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आया? मैं बोला कश्मीर से आया हूँ। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर,
1: मिलने की चाहत ने मिला दी।
0: नहीं, मैं मिलने गया ही था उनसे, तो देखा तो वो अंदर से आ, लेकिन वो नीचे ही मिल गए। तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है, वो ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने
1: जी।
0: तो बहुत खुश हुए, बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं। तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे
1: जी,
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं। तो मैंने पहला गीत यही गाया था, तो जो मैं दो लाइन आपको सुना के, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में।

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का
1: जी।
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी, मैं
0: और
1: करता।
0: इन सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहाँ चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बम्बई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।
0: बहुत धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
3: The Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, today approved five projects worth over 13,000 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said four multi-tracking projects of railways will cover eight districts across West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The minister said the government has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 to four-lane standard in Bihar.
4: Five major decisions have been taken. The first four projects are related to the railways, while the fifth is a highway project. The first four railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The fifth project is the construction of a four-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
5: Total 13,041 crore rupees ke projects aaj cabinet ne approve kiye.
3: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has said India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a range of 6 to 8%. He said this growth story is driven by four key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Mr. Vaishnav was addressing the Uttar Pradesh-Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference 2026 in New Delhi. Union Minister of Education Prahlad Joshi today met with senior officials of the Department of Higher Education to review the implementation of the initiative to provide free online coaching to youth preparing for competitive examinations. The program builds on the announcement made by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day address. President Draupadi Murmu today advised public servants to use social media platforms not only to inform and engage citizens, but also to listen to their concerns, understand them, and respond appropriately. She stressed that when information travels rapidly, accuracy, credibility, and public interest must always guide official communication. She said this during her interaction with the officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service at Rashtrapati Bhavan. U.S. Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve security. Mr. Gore is on his maiden visit to the Union Territory, where he called on Chief Minister Omar Abdullah at his residence in Srinagar. He described the meeting with the Chief Minister as positive and said both sides have identified key follow-ups to be taken forward in the future. Iran's Armed Forces Chief of Staff Major General Ali Abdullahi has warned that countries on the southern shores of the Persian Gulf should not assist or facilitate U.S. military forces. The Armed Forces Chief said Tehran is closely monitoring military activity at regional bases. His warning comes as the U.S.-Iran conflict enters its fourth month, while the Pentagon evaluates its military footprint in West Asia with a view to reducing its presence. In the BWF Badminton World Championships, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto stormed into the pre-quarterfinals in New Delhi. Home favourites Sattvic Sairaj and Ki Reddy and Chirag Shetty have also advanced to the pre-quarterfinals after receiving a walkover. However, men's singles player Lakshya Sen and women's singles player Unnati Hooda bowed out of the tournament. In men's cricket, India beat hosts Sri Lanka by 165 runs in the first test of the two-match series in Galle today. India now leads the two-match series 1-0. Chasing a target of 372, Sri Lanka were bowled out for 206 during the post-lunch session on day 5, handing India a comfortable victory. And with that, we end this news bulletin.
6: ఆకాశవాణి సమయం 6:10 తెలుగులో ప్రాంతీయ వార్తలు వినే ముందు వాణిజ్య ప్రకటన.
7: ఈ మధ్య భారతదేశంలో ప్రతి గ్రామంలో పైకప్పుల రూపం మారిపోయింది. మునుపు పైకప్పులపై అప్పడాలు ఇంకా బట్టలు ఆరబెట్టేవారు. ఇప్పుడక్కడ కరెంటు బిల్ జీరో అవుతుంది. ప్రతి గ్రామంలో సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టిస్తున్నారు. మీరు పెట్టించండి. 78,000 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తుంది భారత ప్రభుత్వం. 30 లక్షల కంటే ఎక్కువ కుటుంబాలు దీని లాభాన్ని పొందారు. పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన చేరడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి.

0: 15,000 कोटि रूप्यकाणां पञ्च परियोजनाः अनुमोदिताः, यत्र 4 रेल परियोजनाः, एका राजमार्ग परियोजना वर्तते। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् सर्वकारेण प्रतिवर्षं प्रायः 30 अधिक 100 अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं सार्वजनिक निवेशः क्रियते, येन सततार्थिक विकासः संवृत्यते। सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणात् परं परीक्षा परिष्कारे राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय केन्द्र सर्वकारस्य प्रतिवचनम् ऐच्छत्। कोलंबिया देशे भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 12,300 यावत् प्रवर्धिता। अपि च भारतेन प्रथम निकष स्पर्धायां श्रीलंका दलं 65,100 धावनांकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समुपविष्टेन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य 41,30,000 कोटि रूप्यकाणां पञ्च प्रमुख परियोजनानां अनुमोदनं कृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
0: एतासु 4 रेल परियोजनाः, एका च राजमार्ग परियोजना समाविष्टा अस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् रेल विभागस्य 4 बहुमार्ग परियोजनाः पश्चिमबंग, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश राज्यानां 8 जनपदान् समावेक्षन्ति। एतासु खड्गपुर भद्रक चतुर्थ रेल मार्ग, भद्रक हरिदासपुर चतुर्थ रेल मार्ग, गुम्मिडी पुंडी गुटूर तृतीय चतुर्थ रेल मार्ग, सहिव कटक पारादीप तृतीय चतुर्थ रेल मार्ग परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। अनेन भारतीय रेल मार्ग संजाले प्रायः 10,400 किलोमीटर परिमितस्य नूतन मार्गस्य योगः भविष्यति।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् 50,000 अधिक 4,900 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन युक्ताः एताः रेल परियोजनाः 2000तमस्य 30-31 वा वर्षपर्यन्तं सम्पूर्णाः भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् मार्गक्षमतायाः वृद्ध्या यातायात गतिशीलतायां महान् परिष्कारः भविष्यति, येन भारतीय रेलवे संचालन दक्षता सहैव सेवा विश्वसनीयता सुदृढा संवर्तिष्यते। एताभिः परियोजनाभिः प्रायः 48,000 अधिक 4,600 ग्रामाणां संपर्क व्यवस्था सुगमा भविष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य आर्थिक विकासः सम्प्रति वैश्विक स्तरे मान्यतां प्राप्नोति, सहैव देशः 6%-8% यावत् तीव्रगत्या संवर्धते। सः अवदत् यत् विकासस्य अयम् उपक्रमः 4 प्रमुखस्तम्भेषु आधारितो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां 26,000 तमवर्षस्य उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः असूचयत् यत् निवेशः देशस्य विकास यात्रायाः महत्वपूर्णः भागः वर्तते, यत्र भारतं प्रतिवर्षं प्रायः 30,100 अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं यावत् धनं निवेशयति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् वर्धित आर्थिक गतिविधिभिः देशः सततं विकासं रक्षितुं, नूतन उद्योगावसरान् स्रष्टुं, अथ च विकासस्य लाभान् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं यावत् प्रापयितुं सफलो जातः। अत्रावसरे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः प्रतिपादितवान् यत् भारत जापानयोः सहभागिता विकासे प्रौद्योगिक

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी तथा चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली डीपीआर और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को

0: रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
3: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
2: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्ला

0: लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says centre will review subcontracting norms. U.S. Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India sealed a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। सो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री के है एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में है। तो उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं जहां पे

0: यहाँ के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है कि, ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि ज्यादा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीआई ट्रांजेक्शन जो 18-29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
1: बिल्कुल अशीर राज जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भी सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझे और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती है इसके जरिए?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा, उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगा कि पहली बार लोन है, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनकी उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर, दोनों ही ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधर मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में कोशिश की जाएगी। अश्विनी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पर नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा, चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की।

0: प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की एड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की एड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार है उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के एड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
2: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होते हैं। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है, जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था एफएम का भी था, कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसा अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, राइट फ्रॉम एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक जॉब्स मिलती है तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए, वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है, और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है, और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है, इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं, जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
2: प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका, फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.60.039 आ गया। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस आ जाता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसको फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होना चाहिए, ताकि जिस पर्पज के, या फिर फॉलो अप, रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए के हो जाते हैं कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो

0: इसी कॉन्फ्रेंस में ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलोअप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी,
1: डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी। बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहे तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलोअप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भी हाँ भाई ज्यादातर तो लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना है, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहां से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं। अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है,
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें
2: काबू पाएगा। भाई सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
0: इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपके पास है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया है। अभी हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर के टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट की कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रिस्क जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, I4C इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है, 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितने लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ, तो अब लोगों को ओटीपी समझ गए कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है।

0: या कोई मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फोरम में इवन बैंक्स अपनी मीटिंग में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह का अवेयरनेस है, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में है। तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली। आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी 1930 और ये www.ye साइबर, तो साइबर सुरक्षा कवर में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितने जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा है।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
2: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो है इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाया तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं। कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें आरबीआई कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है। तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल इम्प्लाई की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। उनको जनरल बैंकर इम्प्लाई मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा एक सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
0: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए हैं, तो जैसे FFM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इंप्रूवमेंट के ऊपर ही, तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज कि IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा, और जैसे सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है, तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा ऐसा होना चाहिए।

0: ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
0: हाँ देखिए, दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120 तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विनी जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है 2 अक्टूबर से कर रहा है, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात कर रहे हैं 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, अब बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने बाजार जरूर करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं अल्टीमेटली, तो ये कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है बैंकिंग कस्टमर भी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस

0: सेक्टर, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी है, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है तो मॉडर्न बैंकिंग का ये ग्लोबल कंपिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है। और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: अश्विन जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 10 గంటలు దాటి 20 సెకండ్లు. శ్రోతలు వింటున్నారు 103.2 MHz పై మరి న్యూస్ ఆన్ ఏఆర్ మొబైల్ యాప్పై ఎఫ్ఎం కార్యక్రమాలు. ఇప్పుడు వింటారు అలనాటి మీటి గీతాలు. ఈనాటి మధుర గీతాల కార్యక్రమంలో ముందుగా విందాం అమృత సినిమా నుండి ఈ పాటా.

0: मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी।
0: The news read by Reshma Tiwari. The Union Cabinet today approved five projects worth over 13,000 crore rupees, including four railway and one highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared four multi-tracking projects of railway covering eight districts across four states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन. और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
0: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. India's young sensation Ayush Shetty has expressed happiness after securing a second round victory in the men's singles event at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. Talking to media, Shetty said it was a comfortable victory and he is happy to move forward in the tournament.